0: शरण्यम नेपाली सेनाया अस्ट्रेलिया देशस्य च समूह अन्वेषण कार्य संलग्न वर्तते। जलप्लवेन क्षतिग्रस्त धादिङ जनपदस्य जहरे विद्युत संयोजन केन्द्रम सम्भारस्य पश्चात् सञ्चालितमस्ति। अस्यैव भाद्रस्य दशमस्य दिवसस्य भोटे कोशी नद्या जलप्लवेन जहरे खेतवर्तिनी विद्युत संयोजन केन्द्रे 10 फिट परिमिते क्षेत्रे पङ्कजातेन सहितस्य जलस्य एकीभवनानन्तरं विद्युत उपकरण संरचनायां क्षतिः प्राप्ता आसीत्। अस्यैव भाद्रमासस्य दशमी दिवसे भोटेकोशी नद्यां दूरापन्ने जलप्लवे निपत्य अधुनावधि 1095 उत्तर 1003 च जनानां शवः प्राप्तः वर्तन्ते। अधुनावधि 5 सहस्राणि 30 उत्तर 100 जनाः विलुप्तः वर्तन्ते। राष्ट्रिय विपद सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन ह्य प्रकाशितस्य विवरणस्य अनुसारेण प्राप्तेषु शवेषु 4 उत्तर 100 सत्यापनं सम्भूतं वर्तते। पृथ्वी राजमार्गस्य अन्तर्गते कृष्णभृगौ नूतन मार्गरेखायाः निर्माणेन सहैव मार्गे कुल्यायाः वज्रीकरणस्य च कार्यं प्रारब्धम् अवर्तते। मार्गे विकारावस्थायाः सर्जनस्य 15 दिवसेषु मार्गरेखां निर्माय तत्र वज्रीकरणस्य कार्यं प्रारब्धम् वर्तते। भाद्रस्य 14 दिवसस्य जलप्लवेन तटीयक्षेत्रे कर्तनं कृत्वा मार्गे भुक्षयानन्तरं पूर्णतः अवरुद्धायाः यातायातसेवायाः अतः परम् आश्विनस्य प्रथमदिवस सञ्चालनत्वेन तीव्ररूपेण कार्यं विधीयमानमस्तीति नागढुङ्गा मुगलिन मार्गायोजनायाः पश्चिमखण्डस्य सूचनाधिकारी सचिन्द्र मिश्रः असूचयत्। अद्य भाद्र शुक्ल पञ्चम्यां तिथौ सनातन धर्मावलम्बी नारीभिः विविधैः धार्मिकानुष्ठानैः सह ऋषिपञ्चमी पर्व समाद्रियमाणमस्ति। ऋषिपञ्चमी पर्वणि हिन्दू महिला प्रातःकालिक नित्यक्रियां समाप्य नद्यादौ जलाशयं गत्वा आचारानुसारेण अपामार्गस्य 60 उत्तर 300 दन्तधावनं विधाय स्नान्ति। अस्मिन् पर्वणि रज सम्पर्कजनित दोषस्य परिहारार्थं दीपकलश गणेश पूजनपूर्वकं सारुन्धतिकः कश्यपादि सप्तर्षयः पूज्यन्ते। भाद्रशुक्ल पञ्चम्याम् अरुन्धति सहितानां सप्तर्षीणां पूजनाय विभिन्नेषु ऋषिमन्दिरेषु ऋषीणां दर्शन पूजनार्थं महिलानाम् उपस्थितिः भवति। लोकोपकारिणां महामनीषिणां ऋषीणां स्मरणं तदीय मार्गम् अनुसृत्य अग्रेवर्धनञ्च अस्य पर्वणः महत्त्वाधायक पक्षो वर्तते। भारतदेशेन नेपाल सर्वकाराय प्रतिदिनं 45 उत्तर 600 मेगावाट परिमिता विद्युत् प्रदास्यते। भारतस्योर्जो मन्त्रालयेन ह्य विज्ञप्तिं प्रकाश्य एवं विज्ञापितमस्ति। इति समाचारः।
1: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका स्रोत दूषित हुन सक्ने भएकाले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ।
2: पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पियौ। शुद्धिकरण गरिएको पानी सफा र छोपिएको भाँडामा राखौ। खाना खानु अघि, खाना पकाउनु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बच्चाको दिशा सफा गरेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऊ।
1: सडे गलेका वा झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाऊ। झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड वा अन्य रोगका लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ।
2: सुरक्षित पानी र सरसफाइका अभ्यास अपनाऊ। आफू र परिवारलाई रोगबाट जोगाऊ।
1: थप स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि निशुल्क स्वास्थ्य हटलाइन नम्बर 1115 मा सम्पर्क गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र

थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जिओपिएस पाकिनिना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिकु द यलाथो चतुर्थी ऋषि पञ्चमी भोटिकोसी खुसी बाल सिपनिगुल्या चिन्छ सौ गुइन्याम थेङ्गुदु आतक न्यादो सचिव सुइम तनाचुङ्गुदु लुयाउगु सिम मध्ये सचिव पिएमसिक त म सिकुगु त तालागुदु ल्याउदुगु सिम मसिके त डिएनए परीक्षण यनाचुङ्गुदु आतक चिन्सोद नेस व सुई नेमेसित उद्धार यागुदु उद्धार चुपिन्त सुई सङ्गु होल्डिङ सेन्टरे तया तगुदु नुवाकोटे चिन्पेस व गुइगुम रसुवे चिया सौ नि न्याम धादिङ्गे गुइ पेम तया तगु दु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र चा रसवाया पोटिकुसी खुसी बाल व गु विशेष पुनस्थापना नीति स्रोत या मो मुजुगु प्रतिबद्धता पङ्कादिगु दु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह रसवाय पोटिकुसी खुसी वगु खुसीबालिपा विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र कोष्णा यागु जिल्ला स्थानीय तङ्गी या जनप्रतिनिधि से सल याना थथे धैदिगु ख प्रधानमन्त्री से मन्त्र परिषद ज्याकु सिंह दरबार मिग सुतेन यागु सल स नुवाकोट या प्रतिनिधि सभा दुजपी डाक्टर विक्रम तिमी सेना व अच्युतम लामिछानी लिसे कोट रसुवा धादिङ गोर्खा व तनुव या खुसीबा प्रभावित चिन यागु स्थानीय तङ्गी या प्रमुख पिनसम बोती काइदिगु ख सल सम्प्रभा क्षेत्रीय खुसीबा लिपाय अवस्थाबारे समीक्षा आ या परिस्थिति आ न्याकेमागु पला व पुनस्थापना लिसे विषयले सल केन्द्रित जुगु प्रधानमन्त्री लिसे मन्त्र परिषद ज्याकु धागु ख थोए झोले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल थिति विषयगत च्यागु कार्यदल निर्माण याना सतक वत्ता निर्माण या त गति पिएगु जितना दिल मन्त्री लम्साल पूर्वाधार पुननिर्माण निको मजुकेगु नीति स्थानीय जनप्रतिनिधि या त ग्वाली या त इनाब याना दिल वेक्ल खुसीबा प्रभावित क्षेत्रीय थत्थे वैकल्पिक सडक सञ्चालन तुइन वा यान्ता ता जडान या त गति बियागु धका थ्वाटिका दिल आपक्की सडक व ता निर्माण या त याक्ना सिधेकेगु याना ज्यान ह्याकेगु वेक या धापुदु ठोएजोले यी चुना थगु नेतृत्व या मन्त्रालय माथा थि निकाय या प्रमुखले से सहल स्वागु थथगु लागा या क्षतिग्रस्त पूर्वाधार विवरण वित्त योजना देखे त निर्माण सम्बन्धी अनुगमन व नियमन या त स्थानीय जनप्रतिनिधि से वेक्ल इनाप याना दिल प्रधानमन्त्रीले से सहल स नुवाकोटा विदुर नगरपालिका प्रमुख राजन श्रेष्ठ बेलकोट गोडी नगरपालिका प्रमुख जगत बहादुर गुरुङ किसपाङ गाउँपालिका अध्यक्ष बिरबल तामाङ हो तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी बोती काइदिगु ख अध्यय रसवाया उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्याल कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा हो आम छोडिङ गाउँपालिका या अध्यक्ष बुचुङ तामाङ बोती काइदिगुदु गोसाईकुण्डो गाउँपालिका अध्यक्ष केसाङ नुर्पु तामाङ धासा अनलाइन पाखे सहले बोती काइदिगु ख धादिङ्गा गल्छी गाउँपालिका या अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा सिद्धले गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा गजुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ व मेनिगा रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया विवेक सल उपस्थित ज्यादिगु ख रसुवा पोटिकुसी वगु खुसीबा लिपा वेकपु दथी तनोया देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा व आम्बु खैरिनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमान लिसे गोर्खा या गण्डकी गाउँपालिका या अध्यक्ष दीपक तिमिलसेन नाप सहले पोते कैदिगु प्रधानमन्त्री लिसे मन्त्र परिषद ज्याकुथी थागुदु रसुवाया पोटकोसी वगु खुसीबा लिपा उद्धारेना अस्पतालले सघन उपचार कक्ष आइसियुले उपचार ज्या चुना दिपी मनुलिसे अन्तर्वार्ता कया युट्युब च्यानल पाके सम्प्रेषण यागु सामग्रीप्रति प्रेस काउन्सिल नेपाल ध्यान आकर्षण जुगु धागुदु काउन्सिल हिग प्रेस विज्ञप्ति जारी याना रसुवा वगु खोसीबा या झोले त्रिशुली तिन ए जलविदुर आयोजन पाके चिनु लिपा उद्धार यामत सम मनुलिसे अस्पतालले आइसियुले उपचार जुया चुङ्गु अवस्था अन्तर्वार्ता कया इनसाइड द बङ्कर नाम युट्युब च्यानल पाके सामग्री प्रसारण यागु विषय थगु जानकारी व गुख थोसुबेन ह सगरमाथा क्षेत्र सम्पर्कविहीन जुगु नेनु या दिने लुम छम पथ प्रदर्शक अस्पतालले उपचाररत ज्याचुङ अवस्था आइसियु पाखे अन्तर्वर्त कया बिबिसी नेपाली प्रसारण यागु भिडियो सामग्री या विषय नाप काउन्सिल या ध्यानकर्षण जुगु विज्ञप्ति नेतनाथगुदु
प्रेस काउन्सिल अझको सामग्री या पत्रचार आचार समितिया चाकदुनी चुना थप अध्ययन लिसे अनुगमान जुयाचुङ्गु धागुदु थो विषय मागु अध्ययन नीति सम्बन्धित संचार कमी अस्वालिसे नेपाल मेडिकल काउन्सिल लिसे पत्रचार यानाङ्गु धका काउन्सिल धागुदु प्रधानमन्त्री राहत कोषे आर्थिक संकलन अफुया उनाचोङ्गुदु प्रधानमन्त्री लिसे मन्त्र परिषद ज्याकुथिया कथ आर्थक कोषे मुक चिनसङ्गु अर्ब खुए च्यागु करोड नेसङ्गु लाग निए पेन्दो खुसव खुटका दाम मौजदा दयाचोङ्गुदु कोषे जम्मा जुगु उगु धेबा मध्ये गुगु वाणिज्य ब्याङ्क खाता याना चिगु अर्ब च्यागु करोड पिसङ्गु लाग च्यादो न्यासो व चिन हेतका मौजदादु अथे निगो ब्याणिज्य ब्याङ्के याना निगु करोड सुई खुगु लाग चिन निदो न्यासो व गुई कुर्का अमेरिकी डलर मौजदादु थोसिबेन ह्य उगु कोष पाके खुसिबा प्रभाव लागा नीति छगु अर्ब राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण लिसे व्यवस्थापन प्राधिकरणले निकासा जुई थङ्गु गुदु खोपया लाकुली चङ्गु केदारनाथ देग हरितालाका तिज लसता नापुकुसी सरसा निधि चाकु गुदु तत्कालीन जुजु यक्ष मल्ल पलिस्ताइना तगु उगु देग केदारनाथ त्या दर्शनीय नीति मिग चाकु अगु धका संस्कृति अध्येता गणेश रञ्जित कारण अधाइदिगु ख देग या पुजारी प्रमिल राज सुवेदी थोसिबेन छ केदारनाथ त्या जन्मोत्सव बुद्ध जयन्ती वैशाख पुनि व शिलाचर्य अर्थात् महाशिवरात्रि आदि याना दक्षिण निक जक च्याकेको परम्परा दुगु ख तिज व्रत चुम्पी सरसान या त दर्शन या अपुमा धका मिग सुथ निसे देग च्याकुगु ख देग चालितुङका थन त लाख्या मिसापी अन थेङ्गु ख स्थानीय सबिना बोहोजु नापुकुसी देग चाना द्य दर्शन या दया लसता पङ्का दिगु ख वेक कथम विक्रम सम 2072 या त फुका च देग दुबले दुनिया दियो या त पिन्हे दर्शन यानागु धैदिल दुनिया उना दर्शन यागु होता चु लागु वेकल खनादिल थौ भाद्र शुक्ल पञ्चमी खुनु ऋषि पञ्चमी नेपाली हिन्दू मिसा पिन्स अरुन्धती नाप सप्त ऋषि या पूजा आराधना याना हना चङ्गुदु सुथे खुसी फुखुली उना स्वसौ खुइ न्यागु दत्ती बन वा चोला सौ चा नौ बुला मोलिगु चलन्दु हरितालका तिज अप्स ओ पूजा आजा मिसा मिज निमेसिया यागु चलन दुसा तबि ऋषि पञ्चमी पूजा मिसा जक या मागु परम्परा दुगु नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति या पूर्व नायक एवं धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम धाइदिगु ख थौ मो लुई धुङ्का अत्री गौतम भारद्वाज जमदग्नी वशिष्ठ कश्यप विश्वामित्र या पूजा यागु चलन्दु थौ ए या टेकु मूल पनि नाप देगोले मो भक्त जनपिन्स पूजा आराधना एना चङ्गुदु थोए दोथी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नेपाल स्काउट महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग नाप स्वापु तया ए महानगरपालिका वडा नम्बर 12 बालकृष्ण मर्जन कथ अन फुप चागु व्यवस्था यानागु धाइदिगुदु वे कया कथ छुन भवितव्य व आपतकालीन अवस्था या त वा चाकुसे फुक्क कथ व्यवस्था यानागु धाइदिगु ख थौ सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा या मुज्या छताइले चुनितेङ्गु दु मुज्या परराष्ट्र मन्त्रालय हो भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय या न्यस या लिस बिगु ज्याधल दुगु संसद सचिवालय धागु दु मुज्या कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम एसियाली विधायिका संस्थाको परिषद या दुज जुइगु विशेष प्रस्ताव स्वीकृत या त प्रस्ताव याइगु ज्याधल दु अथे अन्तर्राष्ट्रिय स्वापु व पर्यटन समिति शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विधायन व्यवस्थापन समिति व सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समिति या मुजा चोनितेङ्गु दु नेवाते मौलिक लिसे सांस्कृतिक नख या कथ बसपति तया गणेदेव या पूजा
याना मिग व थौ चथा नख न्याका चङ्गुदु थतगु छे चुक कसे नाप पूजा कोठा सुचुपिचु याना छे सक्ले ज छथा समुना विधि कथ चथा न्याकेगु परम्परादु उगु पूजा गणेद या त थिति कथ या सेसाभुसा मरि चोरी तरकारी बुब छ्यागु यै पूजा नीति पालोमा तुमा स्याउ मौसम आमासे तुसी लै कनी मुसिया चना छो केगु बकुला बस्पति फसी पुली लिसे सामग्री तेगु यै पूजा या सन्दर्भ छे दुगु थिति कृषि जोल सिसापुसा या त पूजा सामग्री कथ छेलेगु यै चथा पर्व छेलेगु सिसापुसा बुब न कृषि प्रकृति व मानव जीवन दथु या स्वप या त पिबैगु जनविश्वास दु दक्षिणका उत्पादन जुगु नुगु कृषि उत्पादनले से प्राकृतिक उपज प्रति सम्मान व कृतज्ञता पोङ्केगु तातना चथा पूजा यागु परादुगु इन्देश्वर महादेव या पुजारी शिवप्रसाद सङ्गम अधैदिगु ख चथा नखलिसे तिमिला नाप स्वागु धार्मिक विश्वास नाप स्वाना चङ्गु जनविश्वास दु चथा दिने तिमिला स्वे मोजु धाइगु जनविश्वास दु तिमिला सोसा खु दोष ब्या थमेस्या मदों कुगु दोष ल्या फुगु परम्परा या त मान्यता दया चुङ्गुली पूजा याइब्ले नाप स्वर्गत पाखे मस्वेगु यागु चलन्दु थौ ए चथानख हनिगु ज्यापु संस्कृति विकासको स्यानोकु सन्त कुमार मर्जन धाइदिगु ख थौ कमलादि गणेदे व मरेउ गणेदे विशेष पूजा याइगु परम्परादु नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ पोटिकुसी खुसी बाल यातायात लाग्या जुगु क्षति ओ तनाचुङ्गु ट्रक कन्टेनर चालकको मजदुरी अवस्थाबारे सरकार या त ध्यान आकर्षण याकु गुदु महासङ्घ नायो राजेन्द्र विक्रम बानिया नेतृत्व पुचल मिग पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल नाप नाप्लना क्षति या धल बियादिगु ख भदौ 10 गते या पोटिकुसी खुसी बाल लाना पेस ट्रक व कन्टेनर तनाचुङ्गुदु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सुयादिसे विश्वविद्यालय पदाधिकारी नाप अन्तर्किया याना दिगुदु मध्य प्रदेश या थिथि जिल्ला या भ्रमण या झोले मन्त्री पोखरेल विश्वविद्यालय समग्र अवस्था ज्याजो व विश्वविद्यालय बोलना चुङ्गु पङ्ग व हात्या बारे थुइका दिल सोनिगले तिथि लागे प्रतिबन्धित विद्युतीय चुरोट भेप या भण्डारण ओ न्यागु मिगु सुच या लिदस या प्रहरी पेमेसित जोङ्गुदु ए उपत्यका अपराध अनुसन्धान ज्याकु या पुचल प्रतिबन्धित भेप या कारोबारे बोती कागु दोपने उमित जोङ्गु ख ओपी पाखे निन हेस ओ नेगु फेप न प्रामर यागुदु धादिङ या पूर्णलाल श्रेष्ठ ए या शुभम गुप्ता राजन मुक्तान व काबेरा सक्षम श्रेष्ठ या त जोङ्गु दु ए महानगरपालिका छ चुच्चे पाटिया रेसा कलेक्सन ना या गोदाम व महाबौद्ध या आरएचएस इन्टरनेसनलले दुगेङको सोगु ए उपत्यका अपराध अनुसार ज्याकु धागु ख तितोपत्र बजार या त सुदृढ आधुनिक पारदर्शी हो लगानी मैत्री या से बजारे तिथि पङ्ग सिके त अर्थ मन्त्रालय पुँजी बजार सुदृढकरण तथा पुनर्स्था ज्या योजना 2083 पिथङ्गुदु मिग पिथङ्गु सुइछगु धलया ज्या योजना या प्राथमिक तथा निकोगु बजार या सुधार नुगु वित्तीय उपकरण या विकास संस्थागत लगानी विस्तार ऋण पत्र बजार या विकास नेप्से या पुनः संस्था गैर आवश्य नेपाली या त निकोगु बजार कर प्रणाली सुधार तथा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था या पुँजी बजार या लगानी या पुनरोकरण नाप या मुख कघना तगुदु मुस्ताङ्गे थौनिसे घर पोझोङ जलवायु सम्मेलन 2083 न्यातेङ्गुदु सम्मेलन थौ कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी उले ज्या याना दितेङ्गुदु सम्मेलन बोती क्या त पेस हो नि छगु स्थानीय त व सुई खुगु जिल्ला समन्वय समिति या जनप्रतिनिधि मिग सनिले अन थेन धङ्गुगुदु
फ्रेन्च सरकार मस्तेत सामाजिक सञ्जाल छेले मदैको कथा व्यवस्था या तेङ्गुदो थोन हने अनि या अदालत थज्याको प्रस्ताव या त बदर याको ख तर आ उकी चु स्वाफे याना प्याचे नक्सा हाक्न सरकार नुगु प्रस्ताव न्योबोगु राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोन धाइदिगु ख थौ देनिङक मौसम हिलिगु धागुदो मौसम पूर्वानुमान माशाका कथ इनेसिया इले कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा या छगुनीको थासे आपल वावै कोशी बागमती व गण्डकी प्रदेश या हिमाली लागा छु थासे व लुम्बिनी कर्णाली व सुरपुरसन प्रदेश हिमाली लागा मो थासे नोन्याना वा नप च्वापु क्वा वैगु धागुदु मिग सङ्कुवा सभा या तासी गाउँ स्नो स्टेसन व खोप या आपल थासे वा व गुख सङ्कुवा सभा 167.4 मिलिमिटर व खोप या चागु नारायण स्टेसन 111 मिलिमिटर वा व गुख नेपाल भाषा बुक कोचाला शुभ्या

ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मुस्तांग के घड़पझोंग में जलवायु सम्मेलन शुरू। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व का ध्यान आकर्षित कराने की प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रतिबद्धता। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांव पालिका के सुकौरा में इलेक्ट्रॉनिक बस वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग के कृष्णवीर में ट्रैक खोलने का काम पूरा। परसों से पूरी तरह यातायात संचालन में आने की संभावना। और अपनी शर्तें पूरी होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करने पर ईरान अडिग। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि वर्तमान सरकार नेपाल की संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता और दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखकर विदेश नीति संचालित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों के साथ प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर के दौरान विदेश मंत्री खनाल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हुए पड़ोसी और मित्र देशों के साथ संबंध को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। भारत भ्रमण के दौरान विदेश मंत्री खनाल द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री खनाल ने स्पष्ट किया कि उनके वक्तव्य का आशय अतीत में दिखाई देते रहे आंतरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा विदेश नीति और कूटनीति के संकीर्ण राजनीतिक हथियारीकरण से मुक्त होना था। मंत्री खनाल ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आंतरिक राजनीतिक लाभ हानि के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की गलत परंपरा को उन्होंने अतीत के बोझ के रूप में व्यक्त किया था और वर्तमान सरकार उसे त्याग कर आगे बढ़ने का दृढ़ संदेश देना चाहती है। लिपुले, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करते हुए नेपाल के राजनीतिक नक्शे को अनुमोदन के लिए संविधान संशोधन करने का तत्कालीन संसद का सर्वसम्मत निर्णय समग्र नेपाली जनता का साझा राष्ट्रीय संकल्प था। यह उल्लेख करते हुए मंत्री खनाल ने कहा कि देश की संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इसी तरह सांसदों के साथ प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर के दौरान भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि गुठी जमीन से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सरकार जल्द ही विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल को झेलनी पड़ रही प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु न्याय की पहल करने की आवश्यकता बताई है। विधेयक के विशेष समय में बैठक के विशेष समय में बोलते हुए सांसदों ने जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च जोखिम में रहे हिमतालों के संप्रभावित विस्फोट तथा बाढ़ के जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपदा पूर्व तैयारी, वन क्षेत्र संरक्षण और आवश्यक सावधानी अपनाने की आवश्यकता बताई। बैठक में सांसदों ने धार्मिक सहिष्णुता कायम रखने के लिए बच्चों के कार्टून में धर्म परिवर्तन से संबंधित सामग्री प्रसारित नहीं करने, गाँव और बस्तियों में धर्म परिवर्तन अभियान की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने तथा गाय और शालिग्राम की तस्करी रोकने पर जोर दिया। इसी तरह सांसदों ने आपदा से विस्थापित और भूमिहीन लोगों के लिए आवास तथा सामाजिक सुरक्षा की उचित व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजना, गैस की कमी की समस्या का समाधान, सरकारी कार्यालयों में तकनीकी विकास, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी तथा महंगाई नियंत्रण सहित समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने हाल के दिनों में लगातार बारिश के कारण देश के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ और पहिरों में लोगों की मौत होने, कुछ लोगों के लापता होने, कई परिवारों के विस्थापित होने तथा सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि सहित विभिन्न विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। सांसदों ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार, वाहनों की तकनीकी जांच तथा राजमार्ग और स्थानीय सड़कों के जोखिम की पहचान और मरम्मत के लिए तीनों तहों की सरकारों को संवेदनशील होने की आवश्यकता बताई।
नेकपा एमाले संसदीय दल की उपनेता पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा है कि भोटेकोसी बाढ़ के बाद खोज और बचाव में सरकार प्रभावी काम नहीं कर सकी, जिसके कारण अतिरिक्त क्षति उठानी पड़ी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में

परीक्षण बुधवार से शुरू किया जाएगा। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल की अध्यक्षता में हुई कार्य व्यवस्था परामर्श समिति की बैठक में डिजिटल पार्लियामेंट की अवधारणा के तहत अब तक हुई कार्य प्रगति तथा आगामी योजनाओं के बारे में सचिवालय में समिति के सदस्यों को जानकारी दी। बैठक में प्रतिनिधि सभा तथा सचिवालय के कामकाज को क्रमशः डिजिटल प्रणाली के रूपांतरित करने के उद्देश्य से परीक्षण शुरू करने की जानकारी दी गई। सभामुख अर्याल के सचिवालय ने यह जानकारी दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।

0: प्राप्त गरौ।
1: प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट सजिलै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
2: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
3: अब बाँकी समाचार। मुस्ताङ के घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2083 आज से शुरू हुआ। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में हिमाल पहाड़ और तराई में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्याय के विषय पर चर्चा की जाएगी। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वास्थ्य और पूर्वाधार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर बढ़ते जलवायु संकट के असर पर भी मंथन होगा। सम्मेलन के समापन पर जलवायु कार्य योजना और जलवायु न्याय के लिए जलवायु घोषणा पत्र 2083 जारी किया जाएगा। सम्मेलन में रसुआ बाढ़ से हुई जनधन की क्षति की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री शाह ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले असर को न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संबंधी विषय विश्व समुदाय का साझा दायित्व है, इसलिए इसके समाधान के लिए विश्व को ध्यान आकर्षण कराने का प्रतिबद्धता व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने के आह्वान पर शीर्ष नेताओं के बीच सर्वदलीय बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। रासोपा संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में होने वाली बैठक में उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र के गठन तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के विषय पर चर्चा की जाएगी। रासोपा के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने यह जानकारी दी। मकवानपुर में ईवी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांवपालिका 2 स्थित महालक्ष्मी खोला के पास हुई दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। जिला पुलिस कार्यालय मकवानपुर के अनुसार ईवी में 6 पुरुष और 2 महिलाएं समेत 8 लोग सवार थे। घायलों में से 3 को आगे के उपचार के लिए काठमांडू भेजा गया है, जबकि 1 का हेटौड़ा में इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार मृतकों और घायलों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पृथ्वी राजमार्ग के नागढुंगा मुगलिंग सड़क खंड में पड़ने वाले कृष्णभीर में ट्रैक खोलने का काम पूरा हो गया है। रसुआ के भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ के कारण सरकार द्वारा शुरू किए गए खोज, बचाव, उपचार और राहत प्रबंधन के संबंध में 17 भदौ को प्रतिनिधि सभा को जानकारी देते हुए बताया गया कि कृष्णभीर में अवरुद्ध सड़क को भदौ महीने के भीतर ही संचालित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान ने अपनी शर्तें पूरी नहीं होने तक अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने की अड़ान दोहराई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका के साथ बातचीत संभव नहीं है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के बाद आई है, जिनमें इन्होंने ईरान के साथ बातचीत के लिए अमेरिका के तैयार होने के संकेत दिए थे। ईरान ने अमेरिकी पक्ष से आ रहे इन परस्पर विरोध संदेशों पर आपत्ति जताई है। ईरान का कहना है कि बातचीत फिर शुरू होने से पहले उसकी प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें युद्ध और सैन्य हमलों का स्थायी अंत, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, ईरान की जब्त संपत्तियों को मुक्त करना तथा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास

राघसी भी पहले कह चुके हैं कि अमेरिका द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन और उसके लिए मुआवजा दिए जाने तक बातचीत फिर शुरू होना करना संभव नहीं है। हालांकि मध्यस्थ देशों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान जारी रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुस्तांग के घरपझोंग में जलवायु सम्मेलन शुरू। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व का ध्यान आकर्षित कराने के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की प्रतिबद्धता। मकवानपुर के इंद्र सरोवर गांव पालिका के सुकौरा में इलेक्ट्रिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पृथ्वी राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग के कृष्णवीर में ट्रैक खोलने का काम पूरा, परसों से पूरी तरह यातायात संचालन में आने की संभावना। और अपनी शर्तें पूरी होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करने पर ईरान अडिग। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।

की परिभाषा गोविंद राधे, श्री कृष्ण निष्काम प्रेम बता दे। हानि की परिभाषा गोविंद राधे, श्री कृष्ण विमुखों का संग बता दे। वास्तविक लाभ एवं अपूर्णनीय हानि को निरूपण गरिएको राधा गोविंद गीत को यो अनमोल दोहा का साथी श्री राधा माधव समिति नेपाल श्यामा श्याम धाम टिमी द्वारा संचालित कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँहरुलाई राधे राधे को अभिवादन। इस कार्यक्रम में यहाँहरुले विशेष रूप से जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज का प्रचारक स्वामी श्री हरिदास जी को प्रवचन र साथ में जगतगुरु श्री द्वारा निरचित रसमय संकीर्तन श्रवण करी विशुद्ध सत्संग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रम को शुभारंभ करूं सुमधुर पद गायनबाट। प्रस्तुत पद जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराज द्वारा रचित प्रेमरस मदिराबाट लिएको हो।